0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज
2: कोक स्टूडियो सीजन 14

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: कोक स्टूडियो सीजन 14।

रकम बि पुछंदा त भाई हीअ शइ घणी वरिती अथव, किथां वरिती अथव, ऐं तव्हांजी बि दिलि ख़ुशि थींदी। पर जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू चवे थो यार मां हीअ जुमा बाज़ारि मां वठी वियो आहियां, मां इतवार बाज़ारि मां वठी वियो आहियां, कंहिं रेड़ीअ तां जेको आहे सो वरिती आहे, त तव्हां ऑटोमेटिक तव्हांजो जेको चहिरो उहो थोरो मायूस थी वेंदो त वाक़ई यार इहा ख़राबु शइ आहे, तॾहिं कंहिं रोड तां वठी आया। हीअं असांजी हिकिड़ी सोच आहे, हिकिड़ो असांजो साइको आहे। पर ॾिसो त असां जेके आम ज़िंदगीअ में जेके नंढा ॻोठ आहिनि, वॾा शहर आहिनि, बिग सिटी आहिनि तमामु, त उन जे हवाले ते असां पैसनि जी ॻाल्हि ॾींदासीं त जेके असांजा नंढा ॿाहिराड़ी जा ॻोठ आहिनि त असांजा हुते जेके मारूअड़ आहिनि वीचारा हिकु ग़रीब तबिके वारा माण्हू, त जेका बि ख़रीदारी हूंदी आहे लटनि कपिड़नि जी ऐं दवा धर्मल बि जेकॾहिं असां वठंदा आहियूं त कंहिं अताई डॉक्टर खां वठंदा आहियूं, कंहिं हल्के हकीम खां दवा वठंदा आहियूं, ऐं जेकॾहिं लटो कपिड़ो चौपल वठणी हूंदी आहे त असां पंहिंजे इलाइक़े जे हिकिड़े नंढड़े ॻोठ मां हिकिड़े नंढड़े शहर मां वठंदा आहियूं। पर जेकॾहिं उन शहर जा नंढड़े ॻोठ में जेके असांजो हिकिड़ो विचोलो तबिको हूंदो आहे उहो जेकॾहिं ख़रीदारी कंदो आहे त पाण वरी दवा धर्मल लाइ ख़रीदारी लाइ वरी कंहिं वॾे शहर ईंदो आहे, जीअं असांजो सखर आहे, लाड़काणो आहे, मीरपुर ख़ासि आहे, त अहिड़े हिसाब सां उहे माण्हू उन तरफ़ वेंदा आहिनि। वरी जेकर तव्हां ॾिसो था त अञा पैसो घणो आहे त इहे वॾनि शहरनि वारा इस्लामाबाद हुजे, हैदराबाद हुजे, कराची हुजे, त उहे माण्हू वरी दुबई में जेको आहे सो ख़रीदारी करणु वेंदा आहिनि, भले कहिड़ी बि शइ हुजे। जेकॾहिं दवा धर्मल हूंदो त उहे वरी अमेरिका लंडन ताईं बि पहुचनि था। सिर्फ़ु ॻाल्हि असुल में इहा आहे त पैसे जी, जेकॾहिं जेतिरो माण्हू वटि पैसो आहे त ओतिरो असां थोरो अॻिते वञूं था, असांखे इंसानी जेका ख़्वाहिश आहे नफ़्स जी असां उनखे वधीक पंहिंजो इजाज़त ॾियूं था। ए ॻाल्हि इहा ई आहे, वरी बि अचे थी त जंहिंजे घर में दाणा तंहिंजा चरिया बि सेणा, पर असुलु ॻाल्हि जेका आहे उहा पैसे जी आहे।

जीअं असीं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में हिन वक़्तु अव्हांखे इंतज़ारु हूंदो ओसियड़ हूंदो सवाल जो अव्हांखे सवाल नोट कराईंदासीं असांजी अॼु जी जेका शख़्सियत आहे असां उन जी निशानियूं अव्हांखे ॿुधाईंदासीं अव्हांखे उन नाले वारे शख़्स जो नालो ॿुधाइणो आहे त असां अॼु जो प्रोग्राम में ॿिनि शख़्सियतुनि खे असां चूंड कयो आहे ठीकु आहे त असांजी जेके ॿ शख़्सियतूं आहिनि उनजो जेको किरदारु आहे उन जेका शख़्सियत आहे कहिड़े हिसाब सां सुञाती वञे थी ऐं उनजो पूरी सिंध में पूरे पाकिस्तान में उनजो हिकिड़ो नालो हुयो ऐं नालो आहे त असांजूं ॿ शख़्सियतूं आहिनि तव्हां अक्सर असांजे पूरे पाकिस्तान में ऐं पूरी सिंध में तव्हां उन्हनि जो फोटू जेको आहे सो ट्रकियुनि ते ॾिसंदा हूंदव जी हा सवाल तमामु आसान आहे ऐं सवाल तमामु दिलचस्प आहे अहिड़ियूं ॿ शख़्सियतूं जेके पूरे पाकिस्तान में आहिनि त उन्हनि जो अव्हांखे नालो ॿुधाइणो आहे उन्हनि जा जेको आहे सो पूरी सिंध ऐं पूरे पाकिस्तान में जेके ट्रकियूं हलनि थियूं उन्हनि ते उन्हनि जा पोयां फोटू लॻल हूंदा आहिनि ऐं उहे ॿई शख़्सियतूं तमामु वॾा नालेवार ऐं क्लासिकल फ़नकार जी हा क्लासिकल फ़नकार नाले वारा जेको आहे सो आहिनि ऐं उन्हनि जा अव्हांखे असांखे तव्हां नाला लिखी मोकिलींदव जी हा त तव्हां नाला असांखे लिखी मोकिलींदव जेके दोस्त प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहिनि था त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में ईंदव उते एल आर के लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां सेंड कंदव 888 ते ऐं जेके दोस्त फेसबुक ॿुधनि पिया त फेसबुक ते असांजी GFM88 जी आई डी आहे असांजो फेसबुक पेज आहे तव्हां उन ते बि सवाल जो सही जवाबु लिखी मोकिले सघो था असांजो स्टूडियो में नंबर आन थींदो मोबाइल जो तव्हां उन ते बि पंहिंजो असांजे कॉल करे तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था असांजो सवाल तमामु दिलचस्प ऐं आसान आहे शख़्सियत असां ॿ शख़्सियतनि जो जेको नालो आहे उहा चॉइस कयो आहे चूंड कयो आहे त असांजो पाकिस्तान सिंध जूं उहे ॿ नाले वारियूं शख़्सियतूं उहे शख़्स जेके ॿई फ़नकार बि आहिनि ऐं उन्हनि ॿिन्ही जो जेको नालो फोटू जेको आहे उहो ट्रकियुनि ते हूंदो आहे तव्हां असांखे सवाल जो सही जा उमेद त तव्हां जल्द खां जल्द ऐं असां ॾे मोकिले सघो था त साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं हिकिड़ी ॻोढ़नि जी त अखियुनि मां जेके ॻोढ़ा वहंदा आहिनि उहे दिलि सां ईंदा आहिनि छो त जेका दिलि सां असां रोईंदासीं त असांखां अखियुनि मां ॻोढ़ा ईंदा हूअं बि कुझु ॻोढ़ा अहिड़ा बि ईंदा आहिनि जेके चयो वेंदो आहे त इहे ॻोढ़ा असली न आहिनि इहे पंहिंजो वाघूअ वारा ॻोढ़ा आहिनि इहा हक़ीक़त आहे त जेकॾहिं असां खिलंदासीं त ॻोढ़ा न वहंदा पर जेकॾहिं दिलि सां खिलंदासीं त बिल्कुलु ॻोढ़ा बि वहंदा आहिनि असुल जेके अखियुनि जा ॻोढ़ा आहिनि उहे रोअण सां न ईंदा आहिनि पर दिलि जे रोअण सां ईंदा आहिनि ऐं तव्हां दिलि सां खिलंदव त उहे ॻोढ़ा बि ईंदा त असुल में ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त दिलि सां कंहिंखे ॻोल्हणु दिलि सां कंहिंसां मिलणु दिलि सां कंहिंसां प्यारु करणु ऐं दिलि सां रोअणु दिलि सां खिलण सां ई अखियुनि मां पाणी ईंदो आहे लतीफ़ सरकार फरमायो आहे त रोअण साण रीझनि त सारी राति रोआ धरती सभु धोआ लुड़कनि साण लतीफ़ चए

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Din Hai Josho. A product by Biocon International Pakistan.
1: सऊदी अरब के दिफा लाए कें भी हद तई वी सऊदी सिक्योरिटी लाए असो आजम गैर मशरूत है। डी आई जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे है तो पाकिस्तान सऊदी अरब से गड बीठल है। पाकिस्तान हुरमिन शरीफन की हिफाजत लाए उते मौजूद है। असा सऊदी अरब जो दिफा कंदा रहंदासी। अमेरिका सऊदी अरब के 48 F-35 स्टेल्थ वेड़ाक जहाज विक्रो करने की मंजूरी दे छी। अमेरिकी परदे खाते जो चवण है तो 24.23 अरब डॉलर के इन सौदे में मुफासलाती औजार जहाजन जा पुर्जा मेंटेनेंस भी शामिल है। जहाज मिलने से सऊदी अरब जो दिफा वधिक मजबूत ही वेंदो और खतरन के मुंह देने की सलाहियत बेहतर थी वेंदी। पाकिस्तान मके माहदे जो पाबंद है सऊदी अरब से कुलो कुले में मिलाए बीठल है। परदे तर्जुमान पारा सऊदी अरब ने उसी हमलन की मजम्मत हमला नाकाम बनाने से सऊदी के हथियारबंद फौज की सारा। परदे तर्जुमान है तो पाकिस्तान उसी हमलन का पैदा थन्दड़ सूरत हाल के ऐसी रो है। बाबल मंदब की सूरत हाल से भी गंती है। परदे तर्जुमान उमान की साहली पट्टी से एक जहाज मत हमले दौरान एक पाकिस्तानी के गुम थे तस्दीक भी करी।

दुकान मार्केट्स ऐं शॉपिंग मॉल्स रात 9 वॻे बंदि थींदा। शादी हॉल्स ऐं ॿियूं कमर्शियल सरगर्मियूं रात 10 वॻे ताईं हूंदियूं। होटल रेस्टोरेंट्स ऐं कैफेज रात 11 वॻे बंदि कया वेंदा। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे 3 महीननि लाइ किफ़ायत शारी मोम जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। शादी तकरीबन में रुगो हिकु डिश पेश करण जो फ़ैसिलो। फार्मेंस लेबॉरेटरीज़ क्लिनिक्स इस्पताल तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदीअ खां आज़ादु। टेक ओवे ऐं होम डिलीवरीज़ सर्विस खे बि बंदिश खां छूट 3 महीननि लाइ। परॾेही सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
4: कोक स्टूडियो सीज़न 14।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी हसमिन, प्रोग्राम रोशन सुबह में असां अव्हांखे वरी हिकु दफ़ो सवाल नोट कराईंदासीं। त असांजो अॼु जो सवाल आहे, उहे ॿ शख़्सियतूं आहिनि जेके न पंहिंजो के वॾा आफ़िसर आहिनि न का वॾा ज़मीनदार आहिनि, पर उन जो पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में हलंदड़ ट्रकनि ते उन्हनि जा फ़ोटू ज़रूरु आहिनि। ऐं उन्हनि ॿी शख़्सियत जी ॿी जेका निशानी आहे, उहे ॿई क्लासिकल फ़नकार बि आहिनि। तव्हांखे उन्हनि जो नालो ॿुधाइणो आहे। जी हा, सवाल तमामु आसान आहे। जेके बि दोस्त सवाल नोट कराइनि पिया, तक़रीबन सभिनी जो सवाल जेको आहे दुरुस्त आहे, सही आहे। ऐं तव्हां जेकॾहिं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहियो था त असांजो प्रोग्राम में शामिलु थियण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे। SMS ज़रिए मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, तव्हां उते LRK लिखी, यानी लाड़काना, LRK लिखी तव्हां स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो, पंहिंजे शहर नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां सेंड कंदो असां ॾे 888-1 ते। जी हा, 888-1 ते तव्हां सेंड कंदो। ऐं जेके असांजा दोस्त प्रोग्राम फेसबुक ज़रिए ॿुधनि था, त असांजी ID आहे फेसबुक जी, GFM88 जी ID आहे, असांजो पेज आहे फेसबुक जो, तव्हां हुन ते बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं सेम तव्हां असांजे मोबाइल ते बि कॉल करे, फ़ोन कॉल करे तव्हां सवाल जो सही जवाबु लिखाए सघो था। असांजे स्टूडियो में मोबाइल बिल्कुलु आन आहे, तव्हां कॉल करे सवाल जो सही जवाबु असांजे नोट कराए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332132288। जी हा, असांजो नंबर तमामु आसान आहे, 0332132288। ऐं समुझा असांजो दिलचस्प ऐं आसान सवाल, असांजूं ॿ शख़्सियतूं आहिनि जंहिंजो पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में जेके ट्रकियूं हलनि पियूं उन्हनि ते उन जा फ़ोटू आहिनि। ऐं जेको आहे सो उहे ॿई वॾा क्लासिकल फ़नकार बि आहिनि।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: कोक स्टूडियो सीजन 14

Tonight. आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी हा साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में अव्हां जे इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़तम। अव्हां दोस्तनि जा नाला, जिन दोस्तनि बि सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे, तक़रीबन तमामु दोस्तनि सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे। कुझु दोस्तनि उको दुको हयो आहे, चवंदा आहिनि त सवाल जी जेका चालीह पती हूंदी आहे हुनखे बि मञिबो आहे, पर असां कॉफ़ी दोस्तनि जो जेको आहे सो चालीह पती बि मञी आहे। ॻोठ मोहल ॾिणे माशी लॻे वॾनि ॿारनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी ऐं असांजो ॻोठु असू जतोन खां मोहम्मद मूसा जतोई, ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो ऐं महबूब अली मोरे खां ऐं असांजो सोढल लाशारी बि मोरे खां ऐं असगर अली महर घोटकी खां, बख्शण बलोच पनवाकिल खां, एहसान अली भुगटी, कामरान अली भुगटी, ॻोठु रोहल खान भुगटी खां, अब्दुल मजीद भुगटी, ॻोठु नूर शाह भिटशाह खां, अमीर अमर रमेश कुमार कराची खां, मोहम्मद खान कुंभार हालेपुटा स्टाप पीरपुर खास खां, बरकत अली जमाली बलोचिस्तान खां, भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं दोस्त आहिनि हाफिज़ नईम लाइ काज़ी क़ुर्बान अली सतो पनो वाकिल खां, ॿारनि जी वॾी महिरबानी। ऐं अली जान कोरी हमाद कॉलोनी लाड़काणे खां, नओ स्टान लाड़काणे खां ज़ुल्फ़कार अली बुरड़ो जूनियर किफ़ायत अल्लाह जुणे जो, उन जी वॾी महिरबानी। ॻोठु ठुल जुणे जो खां, ॻोठु मसूहब खां नईम अली मीराणी, साईं तारिक अली मीराणी ऐं नओं दरो चौक लाड़काणे खां डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो, अली गुल मीराणी सखर खां, रुस्तम अली पंवर ॻोठु पुनू पंवर सेवण खां, आसफ अली चाचड़ लाड़काणे खां, ख़ालिक लाशारी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई यासमीन मलिक ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि अली ॻोठु झंडोमरी खां, चनेसर भेण मोरे खां, फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठु आगा खान जतोई खां, चवन कुमार कोहली कुनरी खां ऐं सोराब मंगरियो बकापुर खां, गुलाब खान कुंभर सिकंदर अली मक्सी ॻोठु कंगन खां, हाफिज़ रियाज़ कोलड़ो ॻोठु फाज़ुल कलड़े खां, अब्दुल गफ़ूर जतोई ॻोठु अलीसन जतोई पीरशिर खां ऐं मोहम्मद दाऊद जिसकाणी मीरपुर ख़ासि खां, फरमान अली खखराणी अबड़ो घोटकी खां ऐं अशफाक चांडियो ॻोठु आहे लॻ खेरोदर खां, ॿाहिरनि जी वॾी महिरबानी। ऐं सभिनी जी पसंदि जलाल चांडियो ऐं अव्हां जी शख़्सियत बहितरीन सुञाणप जलाल चांडियो।

जी आसमिन जलाल चंडे जे इन खूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंची पियो पंहिंजी पुॼाणी ते हयाती बख़ैर इंशाल्लाह अवां सां मुलाक़ात ज़रूर थींदी तेसि ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो ईंदा इज़त अलाह निगाह पां

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो एं पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: Coke Studio, Season 14.

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है,
2: सुनते रहो GFM 90.8।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: और उसी का इंतजार कर रही हूँ।
1: थैंक गॉड शी इज हियर। सिस्टर मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। Okay, Jan, I'm off now and I'll send you some food. Sister, इनका ख्याल रखिएगा। हाँ, I'm just coming.
2: आपकी ड्रिप चेंज होने वाली है। मेडिसिन लिया आपने?
3: जी। कल रात से बड़ी बेचैनी हो रही है। I can't seem to sleep. मुझे लगता है दवाइयों का साइड इफेक्ट है।
2: कभी कभी बिलावजह बेचैनी हो जाती है।

0: लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज।
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਟੌਪ ਤੇ।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. आप सुन रहे थे GAFM.
3: अजमन क्लब सऊदी बहरन सा गड बीठल आया हूं. पाकिस्तान हरमैन शरीफ पंहिंजे हिफ़ाज़त लाइ हुते मौजूदु आहे. कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदी दिफ़ा कंदा रहंदासीं.
4: ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया. बारूदी सुरंग जे धमाके में पाक फ़ौज जा 6 जवान बि शहीद. ISPR मूजिब उत्तर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया. चकरियुनि दौरान 4 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो. कार्रवाइयुनि दौरान 6 जवान बि शहीद थिया. सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयुनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई. शहीद जवान क़ौम जा हीरो करार ॾिना विया.
3: ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. ॿीहर जंग शुरू कई हुई. ईरान खे तबाह करण जो फ़ैसिलो बि थी सघे थो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान मुआदो करणु चाहे थो, पर हू हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयारु न आहे. असां अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो. अमेरिका ईरान जे एटमी मिज़ाइलनि खे सलाहियत खे ख़तमु करण छॾियो आहे. इस्लामाबाद में एहतजाज खां केर बि रोके नथो सघे. का बि ज़ाती एजेंडा न आहे. क़ौम साथ ॾिनो त हालतूं तब्दील थी वेंदियूं. इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त लेवीअ जो भतो ऐं IPPs ख़तमु कई वञे. सस्ती मानी मिलणु घुर्जे.
4: कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारां पुलिस ऑफिसरनि खे तलब करण बदिरां लिखत में जवाब वठण जो फ़ैसिलो. कमीशन गुज़िरियल ॾींहं वारी कार्रवाई जो लिखत में हुकुम जारी करे छॾियो. एडिशनल IG आज़ाद खान ऐं DIG उमर फारूकी खे लिखत में सवालनि जा जवाब ॾियण जी हिदायत करे छॾी.
3: सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा. कंदकोट में GSN क़ौमी मुआज़ पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली कढी धरणो हयो वियो. टंडरो आदम में ख़ासि कैली राजूणी इतिहाद पारां सिंध में मुंहिंजो

साज उनवान हेठि रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरांगो रद, सूबे के हक ॾियण जो मुतालबो। जेका बाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां बि सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िश ख़तम करण जो मुतालबो।

0: मीरपुर साकरो वेझो पाणीअ जे वारे तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, 25 ॼणा ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल कया विया। वारे आहिनि डाउड़िया बिरादरी जे, ॿिनि धुरियुनि में पाणीअ जे वारे तां झेड़ो थियो। लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबि धुरियुनि जा 25 ॼणा ज़ख़्मी थिया। ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
1: लाड़काणे में जीए सिंध कौमी महाज़ ऐं जीए सिंध स्टूडेंट फेडरेशन जे सॾ ते डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जे मुबैना करप्शन ख़िलाफ़ रैली। अॻवाननि चयो त डिप्टी डायरेक्टर खे 3 साल अॻु लाड़काणे रीजन जे कॉलेजेस में लेबाटरियुनि लाइ 13 करोड़ जारी कया विया, पर किथे बि सामान न आहे मिलियो। डिप्टी डायरेक्टर पैसा हड़प करे छॾिया आहिनि। जांच करे कार्रवाई कई वञे।
0: ऐं उडेरो लाल में वापारीअ खां 16 लख रुपियनि जी फुर ख़िलाफ़ एहतजाज। वापारियुनि रैली कढी थाणे अॻियां एहतजाज कयो आहे। अॻवाणनि चयो आहे त फुर जे वाकियनि सबबि वापारी बिरादरी में गर्दी पखेड़ियल आहे। पुलिस जवाबदारनि खे खुलियल छूट ॾेई छॾी आहे। फुर कयल सामान वापसि कराए बदमीअ ते ज़ाब्तो आंदो वञे।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके भी सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: जो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरंट जो आवाज़
2: GFM 90.8।

0: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum aur koti war koti kadamuna de yow nivi duniya palor rawanwi khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi nupadi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwaze takulo jawab war kawai aw khpal mashuman ta da polio da makhniwi dwa sas ki war kawal mahirawai zaka chum da sas ki da mashuman da badan difai ta kazyatawi aw da hagi da khubun walwat wazrimumi polio yani mustaqila mazuri
3: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन खे दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बनाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां खे रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सगे थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो का बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो। छो ते ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ਕਿ ਜੋ ਇਤਫਾਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
1: यमन में सरकारी फौज ए हुसैन के तंजीम अंसारुल्लाह में झड़पू 63 जणा मारजी वया। केतरा ही जख्मी यमनी सरकारी फौज मूजिब अंसारुल्लाह के थाकन के निशानो बणायो वयो आहे। जंहिंजे नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ए माली नुकसान थियो आहे। केतरनि ई हंधनि तां बागी फरार थी वया आहिनि।
0: ईरान जंग बाबत वो फैसलो करो आया बीहर जंग शुरू करे ईरान के तबाह करो फैसलो भी थी सके तो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहे ईरान मुआदो कर चाहे तो पर वक्त मुआदे लाइ तैयार ना अस अड़ो मुआदो कदी जो अस बेहतर होंद। अमेरिका ईरान के एटमी मिजाइल सलाहत खत्म कर छी है।
1: सऊदी अरब ते हमला यूएई खुशहाली ए सलामती लाइ खतरो आहिनि। बोरान जो खात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे। यूएई सदारती सलाहकार अनवर प्रकाशी चयो आहे त ईरानी सदर सां वलीअहद जी मुलाक़ात माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ ऐं मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणु घुरिजनि।

0: कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कदड़ अदालती कमीशन पारा पुलिस ऑफिसर के तलब कर बदरा लिखित में जवाब वो फैसलो कमीशन गुजरे ढी वे कार्रवाई जो लिखित में हुक्मनामो जारी कर छो एडिशनल आई जी आजाद ए डी आई जी उमर फारूकी के लिखित में सवाल जहा जवाब दियण की हिदायत।
1: सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ मुख्तलिफ शहर में रैलियों धरना कंदकोट में जीए सिंध कौमी महाज पारा सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एहतजाजी रैली कड़ी धरणो हो टंड्रोद में खास केली राजूणी इतिहाद पारा सिंध में मुझो साह जो उनवान हेठ रैली कड़ी वही सिंध जो इम्कानी विरांगो रद्द सूबन के हक दियण जो फैसलो जेका बाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी पारा भी सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एहतजाज किया मुजाहरीन पारा सिंध खिलाफ साजिशू खत्म करण जो मुतालबो

0: फैज़गंज में पसंद जे परणे तां गोठ ते हथियारबंदन जी कहा गोठ जुमो राजपुर में हथियारबंद कहा करे फायरिंग कई। पुलिस वाके वारे हंध पहुचण बाद चकरियूं गोठाणन मूजिब नौजवान मुर्तज़ा राजपुर ऐं मेहरापुर वासण नारी हूर राजपुर पसंद जो परणो कयो हो। जोड़ो पसंद जे परणे बाद गुम आहे। नारी जे वारसन घरन ते चढ़ाई कई आहे।
1: थुल में वनवा में वेठल नारी की मुबैना अगवा जो केस दाखिल। हक बाहू कॉलोनी में अगवा थियल कुंवर प्रेम चनो बाजियाब न थी। जवाबदार हुसैन बुरड़ो कालू इसाक हबीब शोभान समेत बियन ते केस दाखिल कयो हो। वारसन पारा नारी के फौरी बाजियाब कराने जो मुतालबो।
0: कुंडरी वेझो मुसाफिर कोच कल्टी 15 जणा जख्मी। छाछरो खां कुंडरी वेंदड़ कोच बचल ओताक वट कल्टी थी। जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडी हन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: कोक स्टूडियो सीजन 14।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वफाकी हुकूमत डीजल की कीमत 3.47 रुपया वधाए छी। फी लीटर कीमत 424.92 रुपया थी वही। पेट्रोल रुगो 43 पैसा सस्तो। पेट्रोल जे फी लीटर कीमत 390.79 रुपया मुकरर। गुड्स ट्रांसपोर्ट एताद भाड़न में 7% वाध जो ऐलान कर छोड़ो। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एताद के सदर मलिक शहजाद एवान है तो गुजरियल 7 दिन में डीजल की फी लीटर कीमत 26.88 रुपया पेट्रोल की फी लीटर कीमत 20 रुपया वाध कई वही है।

असांजो हिकु ई मुतालबो आहे त लेवी ख़तमु कयो 20 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद जे चइनी तरफ़नि मां माण्हू अचणु शुरू थी वेंदा। हुकूमती रिलीफ पैकेज नाकाफ़ी आहे, आवाम जी अक्सरियत खे सब्सिडी न मिली रही आहे। लेवी ख़तमु कई वई त सभिनी खे रिलीफ मिली वेंदो। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज़ नईम चयो त अमरीका ईरान जंग शुरू थियण बाद पेट्रोलियम शयुनि जूं क़ीमतूं वधण बाद भारत, बांग्लादेश ऐं चीन रिफाइनरीज सां ॻाल्हियूं करे आवाम खे रिलीफ ॾिनो। असांजी हुकूमत टारगेट खां वधीक लेवी गॾु करे माण्हुनि जे खीसनि ते धाड़ो हयूं।

पुराणनि सियासतदाननि खे शायदि केटियूं मिलण जो आसरो मिलियो आहे। उन्हनि खां सुवालु कयो त सिंध जे मामले ते छो न पिया ॻाल्हाइनि। पीपल्स पार्टी असेंबली मां सिंध जे विरांगे ख़िलाफ़ु ठहराउ मंज़ूरु करे पंहिंजी पोज़ीशन क्लियर करे छॾी आहे। तालीम वारे सूबे वज़ीर सरदार शाह जूं घारे ऐं ठटे में स्कूल जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हियूं। सरदार शाह चयो त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल जी सियासत ख़तमु थी चुकी आहे। सिंध जो बचो बचो मुतफ़िक़ आहे त विरांगो क़बूलु नाहे। सरदार शाह चयो त जेकॾहिं स्कूलनि में फर्नीचर समेत ॿियूं सहूलतूं न आहिनि, हेडमास्टरनि खां पुछाणो कयो वञे त गुज़िरियल साल जेके पैसा आया उहे काॾे विया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अॻूणे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी खे 5 ॾींहनि जे रिमांड ते FI हवाले कयो वियो। FI प्रोसिक्यूटर मूजिबि ज़मीर अब्बासी जी 24 परॾेही दौरनि जो रिकॉर्ड बि मौजूदु। वज़ाहत जो मौक़ो ॾिनो हो पर इंक्वायरी में शामिलु न थियो। संदसि माली मामलनि, बैंक अकाउंट्स ऐं परॾेही सफ़र जो रिकॉर्ड जांच जो हिसो बणायो वियो आहे। संदसि साथियुनि ऐं मदद करण वारनि खे बि गिरफ़्तार करणो आहे। जवाबदार जो 14 ॾींहनि जो रिमांड मंज़ूरु कयो वञे। अदालत धुरनि जा दलील ॿुधण बाद ज़मीर अब्बासी खे 5 ॾींहनि जे रिमांड ते FI हवाले करे छॾियो। सिंध हाई कोर्ट BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट में 8.5 अरब रुपियनि जी करप्शन केस में ज़मीर अब्बासी जी हिफ़ाज़त ज़मानत मंज़ूरु कई हुई। सिंध हाई कोर्ट अॼु संदसि घरवारी जी बि हिफ़ाज़ती ज़मानत मंज़ूरु कंदे गिरफ़्तार करण खां रोके छॾियो।

पाकिस्तान जी जमीन भंग जी पोखी लाइ काराइती करार। पाकिस्तान भंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पारां हलंदड़ साल 70,000 एकड़नि ते भंग पोखण जो हदफ़ मुक़ररु। सेनेट जी काबीना डिवीज़न बाबति स्टैंडिंग कमेटी जो राणा महमूदुल हसन जी सदारत हेठि इजलास। लाॻापियल अख़्तारनि ब्रीफिंग ॾींदे चयो त भंग जो फ़सुलु साल में 3 भेरा थियण करे सुठो मुनाफ़ो ॾिए थो। सेनेट कमेटी हिदायत कई त यूनिवर्सिटियूं भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी सां गॾिजी तहक़ीक़ जो कमु कनि। सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी पारां भंग जी पोखी ऐं सनअती इस्तेमाल ते ईंदड़ इजलास में चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐं माहिरनि खे बि सॾण जो फ़ैसिलो। कुनरी भरिसां कोचकल्टी थियण सबबि औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 15 खां वधीक मुसाफ़िर ज़ख़्मी। चाचरो खां कुनरी ईंदड़ मुसाफ़िर कोच बचल उतां खां वटि कल्टी थी पई। ज़ख़्मी 1 कलाक ताईं रोड ते तड़पंदा रहिया। एम्बुलेंस देरि सां पहुती। ॿिनि ॿारनि जी हालति नाज़ुक हुजण करे खेनि हैदराबाद रेफर कयो वियो।

0: गाजी कौर थाने तां कतल के समय गिरफ्तार जवाबदार फरार, पुलिस में थरथल हो। SSP कंबर सदात कोट गफलत जो मुजाहरो करण ते SHO अकबर लाशारी के मुअतल करे छड़ियो। जवाबदार की गिरफ्तारी लाए पुलिस जो गोठ कंडी गाड़ी के कड़ो। जवाबदार हथ न अचण ते FZ में भाव गिरफ्तार। गोठो कंडी गाड़ी वासी नौजवान फरीद गाड़ी जे पी जवाबदार राजा गाड़ी ते कतल केस दाखिल
1: करायो।
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: कोक स्टूडियो सीजन 14।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: Coke Studio, Season 14.

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: कोहाट पुलिस लाइंस में जुमे की नमाज दौरान आपघाती धमाको पुलिस पंजा पुलिस अहलकारन समेत 16 जणा शहीद आहिनि 50 खां वधीक जख़्मी DHQ अस्पताल में एमरजेंसी लागू IG KP ज़ुल्फ़कार हमीद चयो आहे त बारूद सां भरियल गाॾी पुलिस लाइंस जे गेट सां टकराइजण बाद धमाको थियो ऐं फायरिंग बि थी स्पेशल ब्रांच जी इमारत ते हिकु ॿियो आपघाती धमाको थियो सेंट्रल पुलिस ऑफिस पिशावर मौजूदु हिकु दहशतगर्द मुक़ाबले में मारियो वियो धमाके में 5 पुलिस अहलकार ऐं 11 शहरी शहीद थिया ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी नोटिस वठंदे IGKP खां रिपोर्ट घुरी वरिती
4: उन्होंने आवाम के ऊपर पेट्रोल पंप फेंका है ये किफायत शारी की बात करते हैं किफायत शारी गवर्नमेंट वाले MPS MNS मिनिस्टर खुद करें ये कौन सी किफायत शारी हम मरियम नवाज 21-11 अरब के जहाज में जो है वो पर्सनल अपने ट्रिप कर रही है लंदन के अपनी बेटी के कन्वोकेशन के डिग्रियों के और ये आवाम जो है वो हफ्ते में अब 4 दिन स्कूल जाएंगी और ये जो बातें करते हैं वजीर आजम साहब

पेट्रोल महांगो थियण ख़िलाफ़ पीटीआई जा एमपीएस गॾु गॾनि ते सिंध असेंबली पहुची विया। असेंबली इंतिज़ामिया दरवाज़ा बंदि करे छॾिया, एमपीएस जो एहतजाज ऐं नारेबाज़ी। सजाद सुमरू ऐं ॿियनि चयो त हुकूमत आवाम ते पेट्रोल पंप किरायो आहे, फौरी तौर पेट्रोलियम लेवी ख़तमु करे आवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे। वफ़ाक़ी हुकूमत डीज़ल जी क़ीमत 3 रुपया 47 पैसा वधाए छॾी, लीटर क़ीमत 424 रुपया 92 पैसा थी वई। पेट्रोल रुगो 43 पैसा सस्तो, लीटर क़ीमत 390 रुपया 79 पैसा मुक़ररु। गुड्स ट्रांसपोर्ट एतिहाद भाड़नि में 7% वाध जो ऐलान करे छॾियो। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एतिहाद जे सदर मलिक शहज़ाद ऐवान चयो आहे त गुज़िरियल 7 ॾींहनि में डीज़ल जी लीटर क़ीमत में 26 रुपया 88 पैसा ऐं पेट्रोल जी लीटर क़ीमत में 20 रुपया वाध कई वई आहे। असांजो हिकु ई मुतालबो आहे त लेवी ख़तमु कयो। 20 सेप्टेम्बर ते इस्लामाबाद जे चइनी तरफ़नि मां माण्हू अचणु शुरू थी वेंदा। हुकूमती रिलीफ पैकेज नाकाफ़ी आहे, आवाम जी अक्सरियत खे सब्सिडी न मिली रही आहे। लेवी ख़तमु कई वई त सभिनी खे रिलीफ मिली वेंदो। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज़ नईम चयो त अमरीका ईरान जंग शुरू थियण बाद पेट्रोलियम शयुनि जूं क़ीमतूं वधण बाद भारत, बांग्लादेश ऐं चीन रिफाइनरीज सां ॻाल्हियूं करे आवाम खे रिलीफ ॾिनो। असांजी हुकूमत टारगेट खां वधीक लेवी गॾु करे माण्हुनि जे खीसनि ते धाड़ो आयूं। कंहिं सियासी जमायत खे रस्ता बंदि करण जो कानूनी हक़ न आहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पीटीआई जे लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते तफ़सीली फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। फ़ैसिले में चयो वियो आहे त अहिड़ी सरगर्मी जंहिंसां बुनियादी हक़ मुतासिर थियनि, उहे आइन जी भञकड़ी तसवर कई वेंदी। ज़िमेवार शख़्स खे क़ानून मूजिबि कार्रवाई जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो। कंहिं बि सियासी जमायत खे रोड या रस्ता बंदि करण जो को कानूनी हक़ न आहे। सूबाई हुकूमतूं इस्लामाबाद मार्च जे लाइ सरकारी वसीला ऐं फंड जो इस्तेमालु न कनि। सरकारी गाॾियुनि ऐं मशीनरी खे लॉन्ग मार्च जी सहूलियत लाइ इस्तेमालु करण ते मुकमल पाबंदी आहे। पाकिस्तान सऊदी अरब जे दिफ़ा लाइ कंहिं बि हद ताईं वेंदो। असां हरमैन शरीफ़नि जे हिफ़ाज़त लाइ हुते मौजूदु आहियूं। हुन में कंहिंखे शक न हुजणु घुरिजे। कंहिं बि अग्राई ख़िलाफ़ु सऊदी जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं। पाकिस्तान मुकमिल तौर सऊदी अरब सां गॾु बीठो आहे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ़ चौधरी जो अरब TV खे इंटरव्यू। DGISPR चयो त सऊदी सिक्योरिटी लाइ असांजो अज़म गैर मशरूत आहे। उहो ॿिन्ही मुल्कनि जे अवाम, फ़ौज ऐं सियासी क़यादत जे विच में अणटुट तारीख़ी रिश्तो आहे।

ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। जंग करे ईरान खे मुकमल तौरु तबाह कयूं या न, उहो हिकु वॾो फ़ैसिलो हूंदो। कुझु बि थी सघे थो, अमरीकी सदर ट्रंप जी धमकी। हिकु इंटरव्यू में ट्रंप चयो त ईंदड़ हफ़्ते न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सां मुलाक़ात कंदुसि। ईरान अमरीका सां सिधी रीति राब्ते में आहे। ईरानी हाणे बि हिकु मुआदो करणु चाहिनि था। गॾियल क़ौमुनि में इलाइक़ाई इतादनि सां जंग जे ईंदड़ क़दमनि ते सिधी रीति राय वठी सघिजे थी। मां उहो मालूम करणु चाहियां थो त हू किथे बीठा आहिनि ऐं कहिड़े हाल में आहिनि। असां उन्हनि जा वॾा मुआफ़िज़ रहिया आहियूं।

पुराणनि सियासतदाननि खे शायदि कैटियूं मिलण जो आसरो मिलियो आहे। उन्हनि खां सुवालु कयो त सिंध जे मामले ते छो नथा ॻाल्हाइनि। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली मां सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ु ठहराउ मंज़ूरु करे पंहिंजी पोज़ीशन क्लियर करे छॾी आहे। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जूं घारे ऐं ठटे में स्कूलनि जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हियूं। सरदार शाह चयो त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी ऐं मुस्तफ़ा कमाल जी सियासत ख़तमु थी चुकी आहे। सिंध जो बचो बचो मुतफ़िक़ आहे त विरहाङो क़बूल न आहे। सरदार शाह चयो त जेकॾहिं स्कूलनि में फर्नीचर समेत ॿियूं सहूलियतूं न आहिनि त हेडमास्टरनि खां पुछाणो कयो वञे त गुज़िरियल साल जेके पैसा आया उहे काॾे विया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अॻूणे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी खे 5 ॾींहनि जे रिमांड ते एफ आई हवाले कयो वियो। एफ आई प्रोसिक्यूटर मूजिबि ज़मीर अब्बासी जी 24 परॾेही दौरनि जो रिकॉर्ड मौजूदु आहे। वज़ाहत जो मौक़ो ॾिनो हो पर इंक्वायरी में शामिलु न थियो। संदसि माली मामलनि बैंक अकाउंट्स ऐं परॾेही सफ़र जो रिकॉर्ड जांच जो हिसो बणायो वियो आहे। संदसि साथियुनि ऐं मदद करण वारनि खे गिरफ़्तार करणो आहे। जवाबदार जो 14 ॾींहनि जो रिमांड मंज़ूरु कयो वञे। अदालत धुरनि जा दलील ॿुधण बाद ज़मीर अब्बासी खे 5 ॾींहनि जे रिमांड ते एफ आई हवाले करे छॾियो। सिंध हाईकोर्ट BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट में 8.5 अरब रुपियनि जी करप्शन केस में ज़मीर अब्बासी जी ज़मानत मंज़ूरु कई हुई। सिंध हाईकोर्ट अॼु संदसि घरवारी जी बि हिफ़ाज़ती ज़मानत मंज़ूरु कंदे गिरफ़्तार करण खां रोके छॾियो। पाकिस्तान जी ज़मीन भंग जी पोखी लाइ काराइती करार। पाकिस्तान भंग ऐं रेगुलेटरी अथॉरिटी पारां हलंदड़ साल 70,000 एकड़नि ते भंग पोखण जो अदब मुक़ररु। सेनेट जी काबीना डिवीज़न बाबति स्टैंडिंग कमेटी जो राणा महमूदुल हसन जी सदारत हेठि इजलास। लाॻापियल अख़्तियारनि ब्रीफिंग ॾींदे चयो त भंग जो फसल साल में 3 भेरा थियण करे सुठो मुनाफ़ो ॾिए थो। सेनेट कमेटी हिदायत कई त यूनिवर्सिटियूं भंग कंट्रोल ऐंड रेगुलेटरी अथॉरिटी सां गॾिजी तहक़ीक़ जो कमु कनि। सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी पारां भंग जी पोखी ऐं सनती इस्तेमाल ते ईंदड़ इजलास में चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐं माहिरनि खे बि सॾाइण जो फ़ैसिलो

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतिलबु ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।

शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खैबर पख्तूनख्वा के शहर कोहाट में दहशतगर्दन जो पुलिस लाइन्स वेझो मस्जिद से आपघाती हमलो पंज पुलिस अहलकारन समेत 16 शहरी शहीद 70 का वधीक जख्मी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द भी मारा व्या आईजी खैबर पख्तूनख्वा चयो आहे त दहशतगर्दन जा हमला हौसला घटाए नथा सघन सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम घरू वजीर मोहसन नकवी केपी के वे वजीर सोहेल आफरीदी ए बन पारा दहशतगर्द हमले की मजम्मत जख्मी के तिबी सहूलत देने की हिदायत
1: Police and with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi people. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters.
0: सऊदी अरब की सलामती से ठाह नथो करे सकजे सऊदीया की सलामती लाए पाकिस्तान हर हद पार करण लाए तैयार है डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब टीवी के इंटरव्यू डींदे चयो त सऊदी अरब की सिक्योरिटी लाए पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत है कें भी जारहाणन कदमन खिलाफ सऊदी भाईरन से गड बीठल आयु पाकिस्तान हरमैन शरीफन की हिफाजत लाए उते मौजूद है कें भी जारियत खिलाफ सऊदी जो दिफा कंदा रहंदासीं यमन में सरकारी फौज ए हुसैन की तंजीम अंसारुल्लाह में झड़पू 63 जणा मारजी वया केतरा ही जख्मी यमनी सरकारी फौज मूजिब अंसारुल्लाह के थाकन के निशानो बणायो वयो जैं नतीजे में हुसैन जो घणो जानी ए माली नुकसान थियो आहे केतरन ही हंधन तां बागी फरार थी विया आहिनि ईरान जंग बाबत वो फैसलो करो आया बीहर जंग शुरू कर ईरान के तबाह करो फैसलो भी थी सके तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान मुआदो कर चाहे तो पर इन वक्त मुआदे लाए तैयार ना है असा अड़ो मुआदो कंदी जो असा लाए बेहतर हों अमेरिका ईरान की एटमी मिजाइल सलाहियत खत्म कर छी है सऊदी अरब से हमला यूए की खुशहाली ए सलामती लाए खतरो आहिन बोहरान के खात्मे लाए गालन जो सिलसिलो शुरू कयो वञे यूए की सदारती सलाहकार अनवार करगाश चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद की मुलाकात में माज़ीअ के विसारे अगते वधण ते इतफाक थियो मुस्तक़बिल लाए पहिरियों कदम हमला रोकण हुजण घुर्जे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 खारजी दहशतगर्द मारजी वया बारूदी सुरंग के धमाके में पाक फौज जा 6 जवान भी शहीद आईएसपीआर मूजिब उत्तर वजीस्तान में ऑपरेशन दौरान 6 खारजी दहशतगर्दन के मारे वयो अंगो में वे चक्रिन दौरान 4 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो कार्रवाई दौरान 6 जवान भी शहीद थी वया सदर आसिफ जरदारी ए वजीर आजम पारां दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस के भेटा पेश शहीद जवान कौम जा हीरो करार वजीर आजम की फ्यूल रिलीफ पैकेज लाए 25 अरब रुपया जारी अहल वाहपेदार की रकम 48 कलाक अंदर पेट्रोल पंप्स के अदा कई वेंदी पेट्रोलियम वाली वजारत मूजिब वजीर आजम के रिलीफ प्रोग्राम लाए 3 महीनों की रकम रखी वही है पेरे महीने लाए 25 अरब रुपया स्टेट बैंक के जारी किया वा सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर शाहनवाज कुंभर कत्ल केस में मकामी अदालत के कार्रवाई का रोके छोड़ो सिंध हाई कोर्ट के केसन के सेशन कोर्ट मुंतकिल करने के फैसले खिलाफ अपील से बुधनी थी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बरुकनी बेंच बुधनी कई वकीलन जा दलील बुधन बाद सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट के वधिक कार्रवाई का रोके छोड़ो अदालत धुरन के नोटिस जारी कदे बुधनी 13 अक्टूबर तीन मुलतवी कर छी कराची में पीटीआई जो तेल अघन में वाद ए सिंध में करप्शन खिलाफ सिंध असेंबली अडो गडह गार्डन से एहतजाज पीटीआई एमपीएस जो करप्शन कंदड़न खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो सिंध हुकूमत के तर्जमान सादिया जावेद है तो पीटीआई वारा इल्जाम लगाने का पेरी गोगी की करप्शन जो हिसाब दियन सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियूं और धरना कंदकोट में जसकम पारां सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ़ रैली कढ़ी धरणो हयो वियो टंडो आदम में खास केली राजूनी इतिहाद पारां सिंध में मुंजो साह जे उनवान सां रैली कढ़ी वई सिंध जो इम्कानी विरहांगो रद्द सूबे के हक़ ॾियण जो मुतालबो जेकब बाद में एस यू पी पारां बि सिंध जे इम्कानी विरहांगे खिलाफ़ एहतजाज कयो वियो मुज़ाहिरीन पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तमु करण जो मुतालबो कंदकोट में कौमी अवामी तहरीक जो समाजी तंजीम हैंड्स खिलाफ़ एहतजाज डीसी ऑफिस आॾो धरणो मुज़ाहिरीन जो हैंड्स ते घरनि जी तामीर लाइ मिलंदड़ पैसनि में करप्शन जो इल्ज़ाम मुज़ाहिरीन चयो त हैंड्स सिंध पीपुल्स हाउसिंग स्कीम में करप्शन करे रही आहे घरनि जी किस्तनि ते मुतासिरनि खां पैसा वरिता पिया वञनि इंसाफ़ कयो वञे अमनपुर वेझो शागिर्द खणी वेंदड़ कार्गो रक्षा लालण वाह में किरी पियो भरपासे में मौजूद माण्हुनि शागिर्दनि खे ॿुॾण खां बचाए वरितो कार्गो रक्षा स्कूल जी मोकल थियण बाद शागिर्दनि खे घरनि ॾांहुं खणी वञी रहियो हो त ओचितो वाह में किरी पियो टे शागिर्द वाह में ॿुॾी विया जिन खे पाणीअ मां कढी बचायो वियो मेहड़ में साफ़ पाणीअ जी फरहमी न थियणु गंदगीअ जी आज़ार रोड रस्ता तामीर न थियण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ जमातनि जो एहतजाज GDA, PTI, कौमी अवामी तहरीक ऐं ॿियनि पार्टियुनि जे कारकुननि द्वार चौक खां घंटाघर चौक ते प्यादल मार्च कयो अॻवाननि जो चवणु हो त शहर जा बुनियादी मसला हल कया वञनि ॿी सूरत में एहतजाज जारी रखियो वेंदो सखर वेझो नारीअ खे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल करण जो इंकिशाफ़ केस दाख़िल तमाचाणी थाणे ते सरकार जी फरियाद ते नारी सादिया महर जो केस दाख़िल कयो वियो केस में नारी जे वालिद क़ुर्बान महर ॾाॾे गुलबहार महर ऐं ज़ाहिद उर्फ़ राजा महर खे नामज़द कयो वियो पुलिस मूजिबि गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठ गोसण जीअ में नारी सादिया महर खे गोलियूं हणी क़तल कयो वियो हो नारीअ खे संदसि वालिद पंहिंजे पीउ ऐं भाउ सां गॾिजी कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो ऐं कंडियारो वेझो ॻोठाणनि जो ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाज ॻोठ सालेह राजपर जे रहवासियुनि ज़मीन ते मुबैना कब्ज़े जी कोशिश ऐं बासरनि जे नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो ॻोठाणनि जो चवणो हो त ओढाणा बिरादरी जा माण्हू ज़बरदस्ती ज़मीन ते कब्ज़ो करणु चाहिनि था नोटिस वठी बासरनि ख़िलाफ़ कारवाई कई वञे

Assalamu alaikum everyone and a very very cool good evening to all of you. Aapke sab ke liye bahut sara pyar, aadab aur aap kahenge ki main kahan reh gaya tha. Are janab is tarah to hota hai is tarah ke kamon mein. Main thoda kahin reh gaya tha aur kabhi kabhi kuch ghatnaen kuch aisi cheezein ho jati hain ki banda puzzle ho jata hai, banda hairan aur pareshan ho jata hai ki aakhir ho kya raha hamare sath. Hai janab, aap sabhi dost kaise hain? Ummeed hai ki jahan kahin bhi honge bilkul theek thaak honge. Din kitna hi masroof kyun na ho aapka, agar kisi shaam kisi khoobsurat baat se shuru ho jaye to thakan bhi muskura deti hai. Bilkul janab, aur aaj ki shaam bhi kuch aisi hi hai, kyunki agar 2 ghanton mein hum baat करेंगे मोहब्बत की, दोस्ती की, मुस्कुराहटों की, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की, और हाँ कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिन पर आप कहेंगे अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कर दी आज पार्ट में. तो जनाब रेडियो की आवाजों को जरा तेज कर लीजिए, चाय का कप करीब कर लीजिए, और अगर साथ कोई बैठा है तो उसे भी बता दीजिए. खबरदार, अगले 2 घंटे GFM 88 पर सिर्फ मोहब्बत, मस्ती और एंटरटेनमेंट है, और यह है आपका अपना प्रोग्राम GFM 88 से. आई लव यू ऑल. आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. तो जनाब मैं हूं आपका अपना मेजबान, आपका अपना अशफाक, और आज शाम की महफिल को यादगार बनाने के लिए हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ. तो चलें जनाब, आपको अपना नंबर आपकी गोश गुजार करते चलें, जिस पर आप कॉल करके हमें बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, सारा दिन आपका कैसा गुजरा, और जनाब खूबसूरत बात आप बताएंगे मुझे हर चीज के बारे में कि आज आपने क्या खाया, क्या पिया, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, कुछ बातें करूंगा जो आप यकीनी तौर पर मुझे बताने के मूड में होंगे. तो जनाब आप मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर. तमामों के कॉल कर सको था 03000113488, तमामों के मैसेज भी कर सको था. बिल्कुल जनाब, टाइप क्यों पांजे मोबाइल में मैसेज में बनी करे, टाइप कहो SKR स्पेस दियो, पांजो मैसेज लिखो, आई सेंड कहो 8881 ते. बिल्कुल जनाब, तव्हां जा मैसेज भी असां शामिल शो कंदा से, ऐं उन सां गॾो गॾु तव्हां जी कॉल्स भी असां शामिल शो कंदा से, ऐं उन सां गॾो गॾु जेको असांजो FM वारो पेज आहे, GFM 88 नेटवर्क वारो फेसबुक पेज आहे, तव्हां उते भी वञी करे असांखे मैसेज करे सघो था, पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि असांखे ॿुधाए सघो था. बिल्कुल जनाब, त हाणे असां देरि बिल्कुल बि कोन था कयूं, ऐं तव्हांखे ॿुधायूं था शो जो सुपर हिट नंबर, त जीअं तव्हां मैसेज बि टाइप करे वठो, ऐं जेको आहे तव्हां मूंसां ॻाल्हियुनि लाइ पंहिंजे माइंड खे बि फ्रेश करे सघो, ऐं अटेंशन थी सघो. बिल्कुल जनाब, छो त पंज खां सते ताईं असांजो ऐं तव्हांजो साथ रहंदो आहे पंहिंजे प्रोग्राम आई लव यू ऑल में, ऐं शाम जो ई खूबसूरत पहर आहे, ऐं जेको आहे तव्हां ॿ कलाक ताईं मूंसां गॾु रहिजी आहियो, त मां हींअर तव्हां सभिनी दोस्तनि खे ॿुधायां थो पाकिस्तान जो हिकिड़ो ज़बरदस्ती मशहूरु ज़माना सॉन्ग पसूड़ी. छो त पसूड़ी जेको सॉन्ग आहे उहा जेको आहे अली सेठी ऐं शाह गिल जी वॉइस में आहे, ऐं कोक स्टूडियो सीज़न 14 में इहो सॉन्ग जेको आहे रिलीज़ थियो हुयो, ऐं हाणे तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त इहो सॉन्ग जेको आहे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस करे चुको आहे सेप्टेम्बर 2026 में. बिल्कुल जनाब, अ मेजर माइल स्टोन फॉर पाकिस्तानी म्यूज़िक एंड कोको कोला कोक स्टूडियो. ज़बरदस्त जेको अचीवमेंट आहे असांजे इन सिंगर्स लाइ, असांजी पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री लाइ, त इहो ज़बरदस्त सॉन्ग बिल्कुलु तव्हांजो इंतज़ारु थो करे, त मां बिल्कुलु तव्हांखे वेट नथो करायां, ऐं तव्हांखे ॿुधायां थो ज़बरदस्त हिट सॉन्ग पसूड़ी जनाब शाह गिल ऐं अली सेठी जी वॉइस में. तव्हां हिन हिट नंबर खे ॿुधो ऐं खोड़ सां एंजॉय कयो.

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। पसूड़ी बहुत प्यारा सा गाना आपके समातों की नजर की और बहुत से लोग इस कश्मकश में मुब्तला होते हैं कि जनाब ये आखिर पसूड़ी वर्ब क्या है और ये किस लिए इस गाने में शामिल किया गया कि पसूड़ी आखिर व्हाट्स रॉन्ग विद पसूड़ी। बहुत से लोग ये सोचते हैं। तो जनाब बुनियादी तौर पर एक पंजाबी लफ्ज है जिसे उर्दू में कश्मकश, तनाजा, मकमसे या परेशानी के लिए यूज किया जाता है और कहा जाता है और वो दिल की उलझन होती है जिसके फैसले या हम कभी कभी किसी सूरत हाल में फंस जाए तो दिलो दिमाग के फैसले के बीच में तो पसूड़ी उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो खैर आपके या जिसके भी दिमाग में ये पसूड़ी को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा था तो मैंने वो दूर कर दिया। तो खैर जनाब वक्त है आज की खूबसूरत बात करने का। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि कोई आपको कितना चाहता है, मोहब्बत ये भी होती है कि आप किसी की जिंदगी में कितनी खुशी लेकर आते हैं। इसीलिए आज किसी एक ऐसे इंसान को खुश कर दीजिए दोस्तों। जरूरी नहीं कि फूल दें, जरूरी नहीं कि तोहफा दें या कोई बहुत बड़ी चीज करें या डिनर पे ले जाएं, लंच पे ले जाएं। ना ना ना ना ना, मैं ये खर्ची वाली बातें आपके साथ करते ही नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि जनाब अगर आपको किसी को आपको खुश करना है तो आप बस एक मैसेज कर दें, एक कॉल कर लें, उसे कह दें जिसे आप कहना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और मुझे खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। यकीन करें दोस्तों, यकीन करें कभी कभी एक छोटा सा जुमला किसी का पूरा दिन बहुत बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देता है। तो अगर आपने किसी का दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो आप उसको लिख भेजिए आई लव यू माय दोस्त। हम लेते हैं शो की पहली कॉल। देखते लाइन पर हमारे साथ कौन है, क्योंकि आप भी बड़ा वेट कर रहे हैं और हम आपको ज्यादा वेट नहीं करा सकते। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, मुझे प्यारो मिठो भा खेर असा सबरी सा घर मौजूद है। बिल्कुल ठीक ठाक आया भारत की दुआ से गड यो बुधा तो अगर चवं तो मैसेज कियो कॉल कियो आई उनके चाहो आई लव यू यार तो तुम कहें कि वो लव चवंदा
1: असा भाई कैसे न चला पांजो ओला भी चवंदा से कैसे न चाल से सगा प्यार भाई रहो दोस्त।

0: सही सही सही सही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पांच प्यारन भाई दोस्तों के शामिल क्यों ख़राब गाला सही सही सही थे तुम भी जिदी आयो या बस ये सादड़ा आयो मुंह मांगे माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम घड़ी सुठी हैबिट आए तमाम घड़ी सुठी आदत आए तो इंसान भी या खासियत होजन खपे तो वो तमाम घड़ो साबरीन भी हुए तमाम घड़ो बर्दाश्त करने वालों हुए तो वो मानू हमेशा कामयाब थी एग्जैक्टली तुम हर ऊंच नीच डिठी है हर कें जो मानू जो मिजाज तुम डिठो है हर कें आजमायो है तरी तुम अज बिल्कुल साबरीन सब्र शुक्र से इग्नोर करने वाली शख्सियत थी आयो ना ते हर नंढी नंढी गाल के इग्नोर कर छड़ियो बाप जी एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल वह साबरीन मानू हमेशा जो है खुश भी रहंदो आए उनकी दिल भी खुश रहंदी आ हमेशा थैंक यू अर्ज़ मोहम्मद भाई पांजो खास ख्याल रखो थैंक यू हमारे साथ अर्ज़ मोहम्मद भाई जनाब उनकी बातें बड़ी प्यारी थी कि वो ये कह रहे थे कि मां तमाम घणो साबरीन आए हैं नंढी नंढी गालन के मां लेखन तो ही ना हैं और जो है बहुत सारी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं और माफ कर देना भी बहुत अच्छी बात होती है सब्र करना बहुत अच्छी बात होती है लेते शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब खेरे साहब सबनी संगत सैयद इमदाद शाह बुखारी साहब कैसा हाल चाल है तांजा सैयद साहब बिल्कुल ठीक ठाक मजे में की हली थी जिंदगानी
1: बस वेगन वांगुर हली थी
0: हाँ मैं छा समझा था वेगन वांगुर की माना वेगन वांगुर जी धिका धाबा खाई दिया डब डब डब करे हले
1: इमदाद शाह बुखारी साहब
0: थैंक यू सो मच दादा थैंक यू इमदाद साहब इहो ॿुधायो शमन जो गानो प्ले थो कयां अदे जी फरमाइश थिए तूं बि ज़िद्दी मां बि ज़िद्दी कंहिंजे नाल त कोन चाहियो
1: किथे
0: रहियो साहब और अब लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम
0: सलाम जी संगत कुर्बान खास के लिए तो कौन है इंटरेस्टिंग आहे अंदाज़ ऐं तव्हांजो जेको लहजो आहे न उहा ख़बर पइजी वेंदी आहे त कुर्बान साहब असां सभिनी सां गॾु मौजूदु आहे अचानक हैरत थी ना मूंखे त वरी तव्हांजो प्रोग्राम सुठो थियो आहे थैंक यू सो मच दादा कुर्बान भाई इहो ॿुधायो कीअं हले थी तव्हांजी बि ज़िंदगानी ज़िंदगी तव्हांजी कीअं थी हले मुंहिंजा जानी
2: बस शुक्रा रब जो अलाए इंसानी शायर चवे तो छा पुछो की जिंदगी गुजरे पई बंदगी में बंदगी गुजरे पई जिंदगी याद जो कहता फ्री दुखी या सुखी
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह ता लाजवाब करे छियो आदा
2: कुर्बान कुछ दोस्त बदन गया
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: काटड़ी का गुलाम रसमर अजी सोलंगी खालक लाचारी
0: सही
2: जरवार की तरह गुलाब रे बलोच रुस्तम पावर गजी को तरह सब सलाम
0: सबनी के सलाम वालेकुम अस्सलाम आदा पांचो खास ख्याल रखजो थैंक यू हमारे साथ है जनाब बहुत प्यारे से हमारे कुर्बान खास के लिए भाई अब गाना वाना चलाने का टाइम आ चुका है जनाब क्योंकि इसके बाद है ब्रेक और ब्रेक हम चाहते हैं कि जनाब ब्रेक भी टाइम पे चल जाए तो इस गाने को सुनिए एंजॉय कीजिए हमारे साथ रहिए

0: Audio.
1: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: ऑल शो। वैसे जनाब अब संजीदगी को थोड़ा सा खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग संजीदा हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि मैं संजीदा ना हो। अभी देखें आपके पास एक दो ऐसे लोग होंगे जो कि बिल्कुल नहीं हंस रहे होंगे, है ना ऐसे लोग। देखें देखें साइड पे देखें, हाँ वो बंदा जो बैठा हुआ है अब बिल्कुल, तो उनके चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं है। तो उन कहेंगे प्लीज स्माइल यार, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये एक ऐसा खतरनाक सवाल है ना। बिल्कुल जनाब, अगर आप किसी को कहेंगे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या कोई आपसे पूछेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो ये जवाब क्या होगा? अगर आप कहेंगे हाँ तो भी फंसेंगे। अगला सवाल क्या होगा? कितनी? और अगर आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा, तो अगला सवाल होगा कितनी ज्यादा? और अगर आपने कहा कि बस बहुत ज्यादा, तो जवाब आएगा अच्छा फिर कल रात मेरा मैसेज देखा क्यों नहीं था? भाई मोहब्बत नहीं, ये तो FBI इन्वेस्टिगेशन है। तो जनाब इस तरह के बहुत सारे सवाल का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कहते हैं कि सवाल जवाब जो है सोच समझ के किया करें और हमेशा खुश रहा करें। आपका अपना अशफाक आपके साथ है और अशफाक जब आपके साथ होता है तो हम चाहते हैं कि आपको फुल ऑफ टाइम इंटरटेनमेंट मिलती रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। वेल, हम मैसेजेस के जाने पड़ते हैं जो कि हमें बड़े प्यार के साथ भेजे गए हैं। मैसेज है गोट मोहम्मद तैयब तेबो खां हबीबुल्ला थेबो तवां जो शो जबरदस्त है, सॉन्ग बुधराजो तेरा मेरा है प्यार अमर। ओके जनाब, तेरा मेरा है प्यार अमर, क्या बात है जनाब, बहुत प्यारा सा गाना, आपको जरूर सुनवाएंगे, आप बस हमारे साथ रहिए। और जनाब गोट मोहम्मद तैयब थेबो से हबीबुल्ला थेबो, आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको, थैंक यू सो मच जनाब। इनके दो मैसेज हमें आ चुके हैं, तो तैयब थेबो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोट मोहम्मद तैयब थेबो खां तवां असांखे मैसेज किया, तमाम घणो थैंक्स। अब्दुल रज़ाक साहब अज असांखे कलाम बुधायो, हथ मथे क्या सीं ॾाढो, क्या बात है जनाब। और अब्दुल रज़ाक वधीक चवनि था मोहम्मद खान कुंभार सरदार मोहम्मद अली कुंभार हालीपुर ट्रस्ट आप खां शो नाइस आहे, कुझु सिटियूं शायरी जूं। जी बिल्कुल जनाब, कुझु सिटियूं शायरी जी ज़रूरु पढ़ंदासीं, त पढ़ियूं जनाब। कह दो कि वो मेरा है, कहीं ये डर के वो मुझसे जुदा तो नहीं, कहीं ये दुआ के उससे मिल जाएं सारी जहां की खुशियां, कहीं ये डर है कि उसकी आंखों को किसी ने देखा तो नहीं है, कभी ये खौफ के वो खुशी मेरी बिना तो नहीं, कभी ये खलिश है कि वो ज़माना मुंतज़िर उसका, कहीं ये अच्छा। इन्होंने जो लिखा है ना उर्दू, तो वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है इनकी उर्दू, तो शायरी बहुत अच्छी है वैसे। थैंक यू सो मच डेडिकेशन मोहम्मद खान कुंभार। अब्दुल रज़ाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी सी शायरी हमें लिख के भेजी है। हम अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, खेर सा सभी से गुड मुझा प्यारा भाव गुलाम अब्बास मला साहब अभी जानू खां केड़ा चरण गुलाम अब्बास भाई सफा फर्स्ट क्लास अदा थोड़ी रेडियो जी आवाज थोड़ी घट करे छियो तो मुखे मुजी आवाज ही अचे थी अच्छा रिपीट अचे तो मुजी आवाज ओके ओके ओके हसन भा ब्या अच्छा कंदा आयो ता अच्छा कम कार सही लगो तांजो माशाल्लाह। हसन भाई केड़ो गानो बुधन चाहियो था आज प्रोग्राम में? सॉरी
1: गुलाम अब्बास वाला।
0: अच्छा गुलाम अब्बास केड़ो गानो बुधन चाहियो था? गुलाम हुसैन उमरानी। केड़ो गानो?
1: सर मुझे यार बेसर मुझे यार के मुझे सलामत
0: है। ओके ओके ओके माँ सरस तो क्या मुझे यार के मुझे सलाम चाहे जाए। ओके अच्छी भी आ जाए तांजा सलाम तां वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम कहीं के डेडिकेट कर दो ये गानो। वालेकुम सलाम, थैंक यू गुलाम अब्बास, अभी जाने को तां सा की कॉल कही आए।
1: ओके सर,
0: थैंक यू सर। जी जनाब गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत प्यारे से दोस्त हमारे साथ थे अभी जानू से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है जनाब, वहां वहां तक तमाम दोस्तों को हम बताते चले। अपना नंबर 03000113488 हमारा नंबर है। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भा प्यारा चार थी।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मुझा प्यारा मिठा भा केड़ा हाल चाल है, केड़ा सा सबनी सा गडवा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्याह ठीक ठाक है, मजे में आयो? सफा मस्त लगी पई आहे, असांजी टीम जबरदस्त लगी पई आहे। तव्हां इहो ॿुधायो तव्हां छा कंदा आहियो?
2: बस तव्हां हिकु चकर इंटरव्यू वरितो आहे, ख़बर आहे सॼी
0: मां विसरी वेंदो आहियां मां छा कयां था।
2: याद गंदो करने यार अच्छा के कादर कोलोड़े यार गल याद नहीं आने सवान ता याद करे ने
0: अच्छा अच्छा ता जो काम का ठीक है तो जेको भी कहो ता गुलाम हुसैन उमरानी कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो
2: यार दोस्त अला दाद मार मामद अली मार पठान खान पटकर अब्दुला गवर तुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे थो अला दाद मार मिठी सुमरो हिकिड़ो अर्ज़ु थी
0: जी जी हुकुम हुकुम अदा
2: कादर कलर खे हिते घुरा वॾो मज़ो थी ॻाल्हाइण में त अहिड़ो माण्हू प्यारो वासी न
0: हाँ सही से बिल्कुल कादिर कादिर साहब असा जो सीनियर जी जी जी जी बिल्कुल असा कादिर साहब अगर असा के बुधे पियो नबी भी बुधे पियो त असा उनके पर्सनली रिक्वेस्ट कंदासी त तवा वापस अचो ताजा फैंस ताजा दोस्त ताके दिल जी गहराइन सा वेलकम करना चाहन ता थैंक यू सो मच ओके मुझा मिठा थैंक यू सो मच जनाब हमारे साथ थे बहुत प्यारे से कॉलर और जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमें मैसेज कर सकते हैं राइट मैसेज में जाइए एस के आर टाइप कीजिए अपना मैसेज लिखिए और सेंड कर दीजिए 888 पर हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर आप हमें फेसबुक पेज पर जाकर हमारे GFMATH नेटवर्क के पेज पर जाके भी अपने दिल की बात लिख सकते हैं और हमारे साथ चैट कर सकते हैं हम आपके साथ मौजूद हैं लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पे कौन है अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम
0: सलाम सबनी संग रदा
3: निसार मा पिता भी सोने पिता भी का
0: निसार पिता भी साहब केड़ा हाल चाल है ठीक ठाक है हो
3: खैर लग गया कहीं तो पांच और बतायो
0: फर्स्ट क्लास पिता भी भाई बतायो प्रोग्राम किए तो ले माशाल्लाह माशाल्लाह अगर अजा आज तवा के मुझे प्रोग्राम में कहें कि आई लव यू चवण हो जाए तो कहें के चवंदो
3: भाई पप्पू पिता भी चलो
0: हां
3: पप्पू पिता भी
0: पप्पू पिता भी ओके गुड वेरी गुड अच्छा यो बताओ पिता भी भाई गानो बताए तो उमरानी जो कहें जे नाल करना चाहो
3: भाई मुख्य तो मुख्य सीधी बताना
0: अच्छा ठीक है तमा बुधाय मा बुधाय जी कोशिश कें तो कहें जे नाल कंदा हो
3: जी सा उस्ताद दाद में ने कहनी पप्पू पिता भी हाजी हुसैन नवानी
0: अच्छा ठीक ठीक थैंक यू निसार भाई थैंक यू थैंक यू चलते हैं जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक के जाने वापस आते हैं और आपको सुनवाते हैं इस ब्रेक के बाद गुलाम हुसैन उमरानी
4: 8:45 PM. This time check is brought to you by
5: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
6: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
7: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास GFM 88 की आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
8: इमरजेंसी कभी बता कर नहीं आती
9: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ
10: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे
8: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सगे थो। इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: This program is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna de yow niwi duniya palor rawanwi khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi no padi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwaze takulo jawab warkawi aw khpal mashuman ta da polio da makhniwi dwa sas ki warkawal mahirawi zaka cho hum da sas ki da mashuman da badan difai taqat ziyatawi aw da haghi da khubun walwat wazarimumi polio yani mustaqila mazuri.
4: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

कहिड़ो कहिड़ो वाह वाह वाह हिकु मिंट मां सर्च करे छॾियां त पोइ तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदुमि सभु बिल्कुलु अची वियो आहे तव्हांखे मां बिल्कुलु इहो गानो ॿुधाईंदुमि अदा थैंक यू सो मच कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो गानो थैंक यू सो मच अदा पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो हमारे साथ बहुत प्यारे से भाई और भाई को सुनवाते हैं अब एक जबरदस्त गाना जो काफी देर से पेंडिंग पे है पीपल आंधी छां होवे इस गाने को सुनिएगा हमारे साथ रहिएगा और हंसते मुस्कुराते हुए शाम के 7 बजे तक मेरे साथ रहिए मेरे साथ निभाइए

0: जी जनाब वेलकम बैक। बहुत प्यारा सा गाना आपके समाचों की नजर किया हमने और आपने यकीन इस गाने को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान में तेजी से जो है खत्म होने वाली और बहुत जगहों पे सर उठाने वाली बुरी जो है बीमारी पोलियो की। बिल्कुल जनाब, पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है 21-27 सितंबर, जिसको खत्म करने के लिए हमारी पूरी टीमें जो है तनदही के साथ काम कर रही है और पाकिस्तान के हर इलाके में गली कोनों में अपनी जांफिशानी से काम करते हुए घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं ताकि इस जो मूजी बीमारी से तमाम बच्चों को निजात मिल सके। पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे की जानिब पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे की जानिब नुमाया पेशरफ्त की है और 1994 में कौमी प्रोग्राम के आगाज के बाद मुल्क में रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस में 99.8% कमी आई है। तो जनाब 2026 में अब तक पोलियो के 4 केसेस सामने आए हैं, जिनमें 3 खैबर पख्तूनख्वा और 1 सिंध से हैं। ये सूरत हाल पोलियो वैक्सीनेशन और निगरानी का अमल मुसलसल जारी रखने की जरूरत को वाजह करती है। 21 से 27 सितंबर तक जारी रहने वाली डेली कौमी पोलियो मुहिम में 115 मुंतखब हाई रिस्क जो है अजला के तकरीबन 3,10,00,000 पांच साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे। ये मुहिम अफगानिस्तान के साथ हम आहंगी में मुनक्किद की जा रही है ताकि पार पोलियो वायरस की मुंतकली के खतरे को कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों को मजीद मुअसर बनाया जा सके। ये मुहिम अफगानिस्तान के साथ हमांगी के लिए जो है वो की जा रही है और 2026 में अब तक 2 कौमी और 1 जेली कौमी पोलियो मुहिम मुनक्किद की जा चुकी है। सितंबर की मुहिम का मकसद बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त को मजीद मजबूत बनाना, उन्हें इजाफी तहफ़ फराहम करना और वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों तक दोबारा रसाई हासिल करना है। सितंबर की पोलियो मुहिम के दौरान 2,73,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। खासतौर पर वैक्सीन से महरूम रह जाने वाली जो डोज है, दूर दराज इलाकों में रहने वाले और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाले बच्चों तक रसाई पर तवज्जो दी जाएगी और खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाए जाएंगे। इससे पहले भी पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके होंगे, जिनको पोलियो वैक्सीन की हर इजाफी खुराक बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त को मजीद मजबूत करती है और इसे पोलियो से बेहतर तहफ्फुज फराहम करती है। माहौलियाती निगरानी के नतायज में बेहतरी आई है और जनवरी से अगस्त 2025 के दौरान 469 मस्बत माहौलियाती जो है नमूने सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 2026 में ये तादाद कम होकर 129 रह गई है, जो 72.5% कमी को जाहिर कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जनाब हमारी टीम इतनी तंदही से और इतनी जानपहचानी से काम कर रही है कि जनाब अब उसका जो रेशियो है बीमारी का वो बहुत कम और जो उसका कहीं पर जाहिर हो रही तो वो बहुत कम उन्हें देखने में आ रहे हैं। पोलियो वायरस की मौजूदगी वाले अजला की तादाद में भी कमी आई है। 2026 में अब तक 35 अजला से मस्बत माहौलियाती नमूने सामने आए हैं, जबकि 2025 में यह तादाद 82 अजला थी। पोलियो वायरस की मौजूदगी में कमी एक हौसला अफजा पेश रफ्त है, तहम वायरस के मुकम्मल खात्मे तक किसी भी सतह पर गफलत की गुंजाइश नहीं है। इस मकसद के मुसलसल वैक्सीनेशन, मजबूत निगरानी और बरवक्त इकदाम का तसलसल बरकरार रखना जरूरी है। आवाम का तावन पोलियो के खात्मे के लिए नहायत अहम है। दोस्तों, वालदेन और बच्चों की देखभाल करने और आने वाले अफराद वैक्सीनेशन टीमों से तावन करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को हर मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलाए जाएंगे। तो कोशिश करें कि इस मूजी मर्ज से अपने बच्चों की जान छुड़वाएं, उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं, क्योंकि जनाब ये बहुत मूजी मर्ज है जिससे हमारे नई नस्ल को बचना है, हमारे आने वाली नस्लों को बचना है और जनाब ताकि हमारी नई नस्ल आने वाली नस्ल जो है वो भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाए। तो जनाब इस वक्त टाइम हुआ चाहता है एक अदद ब्रेक का, हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानिब। आप हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे शो को जिसका नाम है आई लव यू ऑल।
1: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए। आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्श ब्यूटी क्रीम।
3: सचल की सर मस्त धरती,
4: फातिया मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
3: GAFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: खूबसूरतीअ जो असल सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: आप सुन रहे हैं
5: DAFM 88
4: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी चयो आहे त एहतजाज जे नाले ते इस्लामाबाद मथां हमले जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। सोशल मीडिया ते ॻाल्हि थी रही आहे त मख़सूस क़बीलनि जा माण्हू अची रहिया आहिनि। माण्हू या चंदो जमा करण बदिरां दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ जंग ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे। कंहिंखे एहतजाज करणो आहे त पंहिंजनि इलाइक़नि या शहरनि में करे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसन नकवी जो चवणु हो त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फैसले खां पोइ कंहिं बि सूरत में मुल्क जे गादी वारे शहर ते काह नथी करे सघिजे। कंहिं अदालती फ़ैसिले जी भञकड़ी कई त तो हिन अदालत जी दरख़्वास्त दाख़िल कई वेंदी। जवाननि खे ॿुधाए छॾियो आहे त ईअं न थींदो त गोलियूं हलनि ऐं तव्हां ख़ामोश थी वेही रहो। कुहाट में दहशतगर्दीअ जो अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो। तव्हांखे नथो सूहे त हिकु तरफ़ शहीदनि जा जनाज़ा खजनि ऐं ॿिए पासे धरणनि जी तयारी कयो। खैबर पख़्तूनख़्वा जे शहर कुहाट में दहशतगर्दनि जो पुलिस लाइन्स जी मस्जिद ते आपघाती हमिलो ऐं फायरिंग। पंज पुलिस अहलकारनि समेत 16 शहरी शहीद थी विया, 70 खां वधीक ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस जी जवाबी कार्रवाईअ में 6 दहशतगर्द बि मारिजी विया। IG KP चयो आहे त दहशतगर्दनि जा हमला हौसला घटाए नथा सघनि। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म घरू वज़ीर मोहसन नकवी, KP जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदी ऐं ॿियनि पारां वाक़िए जी मज़म्मत, ज़ख़्मियुनि खे तिबी सहूलियतूं ॾियण जी हिदायत।
1: Fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifain and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi government. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
0: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे। सऊदीअ जी सलामती लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयारु आहे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब TV खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म ग़ैर मशरूत आहे। कंहिं बि जारहाणनि क़दमनि ख़िलाफ़ सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं। पाकिस्तान हरमैन शरफैन जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूदु आहे। कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं। यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसन जी तंज़ीम अंसारुल्लाह में झड़पूं 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसारुल्लाह जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो आहे, जंहिंजे नतीजे में हुसन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सानु थियो। केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फ़रार थी विया आहिनि।

ईरान जंग बाबत वड़ो फैसलो करण वारो आया बीहर जंग शुरू करे ईरान के तबाह करण वारो फैसलो भी थी सके तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो है त ईरान मुआहिदो करण चाहे तो पर इन वक्त मुआहिदे लाए तैयार ना है असा अड़ो मुआहिदो कंदासी जेको असा लाए बेहतर हुंदो अमेरिका ईरान जी एटमी मिसाइल सलाहियत खत्म करे छदी है। सऊदी अरब से हमला यूए की खुशहाली ए सलामती लाए खतरो आहिन बहरान के खात्मे लाए गालन जो सिलसिलो शुरू कयो वञे यूए के सदारती सलाहकार अनवर करगाश चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद की मुलाकात में माजी के विसारे अगते वधण ते तफाक थियो मुस्तकबिल लाए पहिरियों कदम हमला रोकण होजन घुर्जे। सिंध असेंबली मका मुकरमा ते ड्रोन हमले खिलाफ मज़हमती ठहराव मंजूर करे वरतो सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जो तरमीमी बिल भी मंजूर पीटीआई के हामी मेंबर सजाद अली पारा बिजली की लोडशेडिंग खिलाफ ठहराव पेश साबिर कायम खानी ध्यान छिकायो नोटिस से गालंदे चयो त हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पीण के पानी जो शदीद बोहरान पैदा थी वो है सिंधु दरिया के कप से होजन बावजूद रावासी गदलो पानी वापरण से मजबूर आहिनि।

0: सिंध के इम्कानी विरहाङे खिलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं ऐं धरणा। कनकोट में जसकम पारां सिंध के इम्कानी विरहाङे खिलाफ़ रैली कढी धरणो हयो वियो। टंडो आदम में ख़ासकेली राजूणी इतिहाद पारां सिंध में मुंहिंजो साह जे सिरे हेठि रैली कढी वई। सिंध जो इम्कानी विरहाङो रद, सूबे खे हक़ ॾियण जो मुतालबो। जेकबाबाद में एस यू पी पारां बि सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन पारां सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं ख़तमु करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: हर हुआ ट्रांसपोर्ट जी का हलेती होते तहां जाए गीत धालन तहां के किदो फील थे तो मुझे हर जगह थे मुझे गीत बसन में मुझे इन सही
3: बसन में टिकटॉक ते बिल्कुल ट्रेंडिंग में धालन
2: लाई आर्टिस्ट तहां जा गाना मना ये समझो गाए करे हुए स्टार थी
4: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने खुश रखे छै तो उए जदे जैसे बो को आर्टिस्ट मुझे गीत गाई तो मुझे खुशी थी है ये अल्लाह पाक असा ही नौजवान ये सुठी गाल मुझे गीतन के जैसे पा वरी बीहर गाइंदा तो इलाही सुठो लगंदो आ मुझे बुरो न लगंदो खुशी थी है तो मुझे इन लायक समझो तो मुझे गीतन के हर जगह से घड़ी घड़ी उन रिपीट कर गायन पाया तो यह खुशी जड़ी गाल मुझे
2: प्राउड की बाकी गाल है।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पहजो शहर पहजो घर सकरण, आई सकरण जो आवाज
3: GFM 90.8।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सखर जे आबाद थाने जे हद में डोहारन ऐं पुलिस विच में मुक़ाबिलो, हिकु अहलकार शहीद। न्यू बस टर्मिनल मुक़ाबले दौरान फायरिंग जी ॾे वठि में कांस्टेबल मोहम्मद अकरम चाचड़ शहीद थी वियो। मड इस्पताल मुंतकिल, SSP सखर बि इस्पताल पहुची वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दे उन्नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी द्व सास की वरकवल महेरवई जकच हम दा सास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप लोग जरूर प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट अगर आप अपने इलाके में करें, अपने शहर में करें, लेकिन इस तरह आके फेडरल कैपिटल को बंद करने की प्लानिंग करना या किसी सूबे के ऊपर इस तरह जाके हमला करना किसी भी तरीके से जायज नहीं हो सकती। आपको इस तरह के वाकयात के बाद वैसे भी आपको जो भी डेटा के एक तरफ आप शोधा के जनाजे हैं और दूसरी तरफ आप धरने के ऊपर जारी करें, कोई भी इसी पे बंदा बैठा हो उसका ये फर्ज है कि हमने जानो माल की तहफ़ करना है और इस्लामाबाद और अपनी टेरिटरी और इस तरह के प्रोटेस्ट को हर सूरत में रोकना है। ये जो जलवार करने वाली जत्थे इसमें फर्क होता है, बाद हर तरह से इकट्ठे होकर आना। ये क्लैरिटी है कि एक भी अल्लाह ना करे जान जाती है तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं। मुल्क का नुकसान है, हमारी इकॉनमी का नुकसान है, सबकी सब तैयार है और हम किसी भी सूरत में एक दफा वो बदमनी नहीं फैलाने लेंगे जो बाजू में लोग फैलाते रहे।
1: वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी है तो एहतजाज के नाले से इस्लामाबाद मथा हमले की इजाजत नथी दई सकजे। सोशल मीडिया से गाल थी रही है तो मखसूस कबीलन जहा मू अची रहा मू या चंदो जमा कर बदर दहशतगर्दी खिलाफ जंग से ध्यान होजन घुर्जे। कंखे एहतजाज करो है तो पांजन इलाकन या शहर में कन। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे मोहसन नकवी तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का कें भी सूरत में इस्लामाबाद से काह नथी कर सकजे। कें अदालती फैसले की भज कड़ी कई तोहिन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कई वी जवानन के बुधाए छो है इं न तो गोलियों हलन तवां खामोश थी वेही रहो। कुहाट में दहशतगर्दी जो अफसोसनाक वाक्य पेश आयो तवां के नथो सूहे तो एक तरफ शहीदन जा जनाजा खजन बे पासे धरणन की तैयारी कजें।

वफाकी सरकार लॉन्ग मार्च के नजर आडो रखंदे इस्लामाबाद में रेड जोन सील करण जो फैसलो करे वरतो। रेड जोन ना वेंदड़ सभी पंज रस्ता मुकम्मल तौर बंद कया वेंदा। जरियन मूजिब रस्तन ते कंटेनर जो ब कतारू लगाए वड़ी नफरी मुकर कई वेंदी। एक्सटेंडेड रेड जोन के सील कर रुगो हंगामी हालतुन में खोलो वेंदो।

0: Pakistan, fully stands with the Kingdom of Saudi Arabia, both diplomatically and physically. And I would like to underscore here the word physically. We will go to any extent for the security of Harmano Sharifan and the Kingdom of Saudi Arabia. To any extent as asked and required by our Saudi government. It should be clear that the people of Pakistan stand shoulder to shoulder with the Saudi brothers and sisters. There should be no doubt on that.
1: सऊदी अरब जी सलामतीअ ते ठाह नथो करे सघिजे. सऊदीअ जी सलामतीअ लाइ पाकिस्तान हर हद पार करण लाइ तयारु आहे. डी जी एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी अरब टीवीअ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त सऊदी अरब जी सिक्योरिटीअ लाइ पाकिस्तान जो अज़म गैर मशरूत आहे. कंहिं बि जारहाननि क़दमनि ख़िलाफ़ु सऊदी भाइरनि सां गॾु बीठल आहियूं. पाकिस्तान हरमैन शरीफ़ जी हिफ़ाज़त लाइ उते मौजूदु आहे. कंहिं बि जारियत ख़िलाफ़ु सऊदीअ जो दिफ़ा कंदा रहंदासीं. यमन में सरकारी फ़ौज ऐं हुसिन जी तंज़ीम अंसारुल्ला में झड़पूं. 63 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी. यमनी सरकारी फ़ौज मूजिबि अंसारुल्ला जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, जंहिंजे नतीजे में हुसिन जो घणो जानी ऐं माली नुक़सान थियो आहे. केतिरनि ई हंधनि तां बाग़ी फ़रार थी विया आहिनि. ईरान जंग बाबति वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां. ॿीहर जंग शुरू करे ईरान खे तबाह करण वारो फ़ैसिलो बि थी सघे थो. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान मुआदो करणु चाहे थो, पर हिन वक़्तु मुआदे लाइ तयारु नाहे. अहिड़ो मुआदो कंदासीं जेको असां लाइ बहितर हूंदो. अमरीका ईरान जी एटमी मिज़ाइल सलाहियत ख़तमु करे छॾी आहे. सऊदी अरब ते हमला यूएई जी खुशहाली ऐं सलामतीअ लाइ ख़तरो आहिनि. बहरान जे ख़ात्मे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो शुरू कयो वञे. यूएई जी सदारती सलाहकार अनवर करगाश चयो आहे त ईरानी सदर सां वली अहद जी मुलाक़ात में माज़ीअ खे विसारे अॻिते वधण ते इतफ़ाक़ थियो. मुस्तक़बिल लाइ पहिरियों क़दम हमला रोकणु हुजणु घुरिजनि. सिंध असेंबली मका मुकरमा ते ड्रोन हमले ख़िलाफ़ मज़ामती ठहराउ मंज़ूर करे वरितो. सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटीअ जो तरमीमी बिल बि मंज़ूर. पीटीआई जे हामी मेंबर सजाद अलीअ पारां बिजली जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ ठहराउ पेश. साबिर क़ाइम ख़ानी ध्यानु छिकायो नोटिस ते ॻाल्हाईंदे चयो त हैदराबाद जे इलाइक़े लतीफ़ाबाद में पीअण जे पाणीअ जो शदीद बुहरान आहे. सिंधु दरिया जे कप ते हुजण बावजूदि रहवासी गदलो पाणी वापराइण ते मजबूर आहिनि.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

कराची का कश्मीर कींझर का कारूंझर ताई सुणी सिंधवासन के अब चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे प्रोग्राम दिल जी गाल सा गदाऊ आया अब चौहान आए अमा बुधी रहा हो जीएफएम नेटवर्क

जा सारा वेण अजा भी उकरल हिन तुझो अर्पल पट अलाए काडे वियो गाल गाल ते केडो विछड़ी वींदो हो गाल गाल ते केडो विछड़ी वींदो हो कोरो हिकड़ो जट अलाए काडे वियो आज़ादीअ जो साह खयमि महसूसु थियो आज़ादीअ जो साह खयमि महसूसु थियो यार ॻिचीअ मां ॻट अलाए काॾे वियो मोखीअ जो जीअं मट अलाए काॾे वियो वाणे जो तीअं हट अलाए काॾे वियो।

उन खां अग असां शामिल कंदासीं हिकिड़ो खूबसूरत ट्रैक अवां सभिनी महबूबनि जे नाओ म्यूज़िक जी दुनिया जे उस्ताद उस्ताद नुसरत फ़तह अली ख़ान जी ख़ूबसूरत आवाज़ में प्यार भरियो ट्रैक अछो त गॾिजी इंजॉय कयो।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: GA FM 88
3: सिंध की आवाज.
4: हर बार जा नंदड़ा कदम.

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सगे थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: जी स्किन डल बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवहा जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवहा के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: GAFM 88
2: नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: का लाड़कानो इते छिन कब्जी मौका यानी बवासीर नवासीर फिस्टुला हाइड्रोसेल पिते जी पथरी ए सोज अपेंडिक्स जो ऑपरेशन चीर खां बगैर चर्बी जा गोढ़ा शुगर जे करे खराब थे जख्म बुकी में पथरी नंढे ए वडे आंडे जा मसाला छाती जा गोढ़ा कैंसर या गुदूद जो ऑपरेशन नई तर्ज ए जदीद मशीन जरिए कयो वने थो। डॉक्टर सुहेल अहमद चन्ना ऑपरेशन जो माहिर सर्जन। एड्रेस कराची मेडिकल सेंटर लग घंटी फाटक रोड लाड़कानो। टाइम रोजाना शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं आचर ते सुबह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं। राबते जे लाइ 0331305374 9। याद रखंदा डॉक्टर साहब हर छंछर ते 12 बजे खां शाम जो 4 बजे ताईं मेहर शहर में मुमताज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तरफा मुफ्त चका सकंदा। एड्रेस लग हाई स्कूल नंबर 1 VIP रोड मेहड़। खुशखबरी लाड़काने शहर जो मशहूर ए मेडिकल जे दुनिया जो वडो नालो डॉक्टर असदुल्ला महर MBBS FCPS गोल्ड मेडलिस्ट सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन। इते हडन ए जोड़न जो सूर कुन रग जो सूर वाई ए चेल जो सूर वडी उम्र जे माण्हुनि ए नंढन बारन में हडन ए जोड़न जा मसला फ्रैक्चर फिरियल पेरन ए जंगुन के ठीक करण हडन ए जोड़न जे हर किस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनन जरिए कयो वेंदो आहे। डॉक्टर असदुल्ला महर हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन। टाइम आचर खां जुम्मो रोजानो सुबह जो 11 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं। एड्रेस बैतुल शफा बोन ट्रामा क्लिनिक लग नौ देरो चौक लाड़कानो। याद रखंदा डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीजन जो मुआइनो कंदा हैं। एड्रेस सखर टाउनशिप RF बिल्डर्स बंगलो नंबर 20 सेक्टर नंबर 3 घोड़ा गेट सखर। टाइम मंझंदि जो 2 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं। वधीक राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 0333-668-64025 फोन नंबर 0744057199।
1: जद हाणे मां वधीक रक्षण जा धिका नथी खाई सघां गाॾी छो नथो वठी
2: रिदा गाॾी वठण को सवलो कम कोने ऐं मूंखे ड्राइविंग किथे ईंदी आहे
1: इन्हनि ॿिन्हिनि मसलनि जो हल आहे अलकासमिया कार शोरूम ऐं कार ड्राइविंग स्कूल लाड़काणो।
3: जी हाँ अलकासमिया कार शोरूम ते नई नई पुराणी गाड़ियों की खरीदो फरोख कई वेंदी आहे। अलकासमिया कार ड्राइविंग स्कूल ते ड्राइविंग की सिख्या सां गॾु इंजन की मालूमात रोड सेंस हाईवे ऐं मोटरवे बुक की मालूमात पिण ॾिनी वेंदी आहे।
1: नंढियुनि ऐं वॾियुनि गाॾियुनि सां गॾु आटो ऐं मैनुअल गाॾियूं पिण सिख्या जे लाइ मौजूद आहिनि।
3: अलकासमिया कार ड्राइविंग स्कूल। एड्रेस स्टेशन रोड लग सपना होटल गिटी लाड़काणो। अलकासमिया कार शोरूम। अलकासमिया कार शोरूम ते नई ऐं पुराणी गाॾियुनि जी खरीदो फरोख कई वेंदी आहे। गाॾियुनि जे कागज़ात जो कम ट्रांसफर फाइल वेरिफिकेशन CPLC टैक्स क्लियर कयो वेंदो आहे। अलकासमिया कार शोरूम। एड्रेस राइस कैनाल रोड दुबई कार वॉश लाड़काणो। राबते जे लाइ शकील अहमद मोरियो मोबाइल नंबर 0300-3436-498 ऐं 0331-342-6498।
4: खुशखबरी लाड़काणे जो मशहूर ऐं मेडिकल जी दुनिया जो वॾो नालो प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी MBBS FCPS DOMS हदारती गोल्ड मेडलिस्ट अखियुनि जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन। हिते अखियुनि जे बीमारियुनि रेटिना यानी अखियुनि जो पर्दो कारो पाणी मोतियो पाणी उन खां अलावा शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जे बीमारियुनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन जदीद मशीननि सां कयो वञे थो। जिना अस्पताल कराची लियाकत मेडिकल कॉलेज हैदराबाद खैरपुर मेडिकल कॉलेज गुलाम अहमद मेडिकल कॉलेज सखर ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणे जो अॻूणो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जमाल सिद्दीकी अखियुनि जे पर्दे ऐं बीमारियुनि जो माहिर फेको सर्जन। इंडस हॉस्पिटल लग लेडीज जेल रोड लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं। अंगारो खमीस
5: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
6: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
7: Dhar mashum aur koti war koti kadamuna de yow nivi duniya palor rawanwi. Khuda polio raz da kadamuna udrawale humshi. No padi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwaze takulo jawab war kawai. اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوي 2 ساس کی ورکول مهیروي زکه چې هم دغه ساس کی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبون ولوت وزري مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
8: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف GFM 88 نیٹ ورک تے
9: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
10: सिंध के माथे का झूमर
11: DFM 88 नेटवर्क,
10: सिंध की आवाज़।

0: या प्यार भरी पोएट्री मूं नाचीस जी आ मुझे तरफा जी एफ एम नेटवर्क जे सबनी बुधंदड़न जे नाव आई स्पेशली मुझे यार प्रेम प्यारे दिलरुबा दिलबर दोस्त मेजर इसरार सुमरो जी फरमाइश ते या शायरी शामिल कई से हियर वधंदा से असा कॉलर्स डे अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथा का
1: सर अस्सलाम वालेकुम बरकत अली को आदो
0: वालेकुम सलाम बरकत अली
1: जी जी ख्वावड़ तो गले
0: ख्वावड़
1: जी जी ख्वावड़
0: साईं मुझा वेलकम भली कार खुशामदीद केड़े लागे का केड़े तरह का गलायो पया
1: जिलो में सर हो गोट मोहम्मद खान ख्वावड़
0: वाह साईं वाह वाह वाह वाह भली कार ॾाढी ख़ुशी थी ॾाढी ख़ुशी थी अवां जी मां सम्झां थो पहिरें भेरे कॉल लॻी आहे असांजे प्रोग्राम में
1: जी सर कॉल पहिरें लॻी आहे
0: प्रोग्राम 20 मिंट आहे प्रोग्राम टोटल मिलाए त 2 कलाक आहे जंहिं मज़ा ब्रेक ऐं एड ऐं ॿियूं टियूं शयूं इहे आहिनि जी अवां जो मौक़ो कोन उहो हाणे मां मजबूर आहियां मोहबतूं आहिनि सभिनी माण्हुनि जूं कॉल कनि था पिया त नेटवर्क बिज़ी थो पियो मिले तव्हां हाणे शिकवा शिकायत दुआ दुआ हाणे शिकवा शिकायत जे बजाए का प्यार जी ॻाल्हि को दिलि जी ॻाल्हि प्रोग्राम जो पैटर्न ॿुधल आहे न पहिरां असां बाउंड न कंदा आहियूं कंहिंखे आज़ादु छॾियो आहे त हू पंहिंजो पैगाम पंहिंजी ॻाल्हि दिलि जी ॻाल्हि असां सां शेयर
1: कनि
0: क्या बात आहे क्या बात आहे यार ॾाढो इहो ख़ूबसूरत वाइब्स आहिनि इहे असां इहे मंज़र ॾाढा वणंदा आहिनि त ट्रैक्टर ते नंढपिण खां जॾहिं उस्ताद जलाल जा गीत हलंदा आहिनि क्या ही बात वाह वाह वाह वाह जलाल जो कहिड़ो कलाम ॿुधणु चाहींदो राणो मूमल जो किसो जलाल चांडियो कंहिंखे कंहिंखे अर्पण चाहींदो कंहिंजे नाम करणु चाहींदो दोस्तनि जा नाला शामिल कयो
1: नालो आहे मामू आहे क़ुरान ते गुर
0: जी
1: ॿियो कुर्बान अली ख्वावड़
0: जी
1: ऐं ॿियो मुंहिंजो पाण जा आमिर अली
0: जी
1: लाकत मुंहिंजो भाउ आहे
0: जी
1: हा भले
0: फरमाइश प्ले लिस्ट में शामिल करे छॾी आहे लख थोरा
1: महिरबानी

हा बिल्कुल अवां जूं शिकायतूं बजा बि आहिनि छाकाणि त अवां जी मोहबत आहे ऐं अवां जो चाहो आहे लॻाव आहे सॼो ॾींहुं दोस्त पहिरीं ॻाल्हि कई ॾाढी दिलि सां ऐं सादी ॻाल्हि कई वाक़ई हिन खे ई दिलि जी ॻाल्हि चइबो आहे त सॼो ॾींहुं ट्रैक्टर हलायूं ऐं राति जो आराम सां घर आराम बि कयूं ऐं अवां जो प्रोग्राम ॿुधूं मां इंतिहाई मकरूज़ आहियां अवां जी मोहबतनि जो जेतिरो मान प्यार चाहो अवां ॾेई रहिया आहियो शायदि हुन ते शल मां पूरो लहण जी कोशिशि कयां थो ऐं शायदि अवां खे वणा पूरो लहां दोस्तो बिल्कुल फरमाइशूं जेके आहिनि त अवां जूं असां लिस्ट में शामिलु कंदा था पिया हलूं पर हींअर ईअं जेकॾहिं लिस्ट में रुगो शामिलु कंदा वेंदासीं त पोइ ॻाल्हि चढ़ी वेंदी असां फरमाइशूं पूरियूं न करे सघंदासीं सो प्रोग्राम में इब्तिदा कजे तुंहिंजी कावड़ में आहे कुर्ब घणो तुंहिंजो प्यारु अलाए छा थींदो मुमताज़ लाशारी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में ही ट्रैक अचो त गॾिजी इंजॉय कयूं

0: लोग झूठ प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट अगर आप अपने इलाके में करें, अपने शहर में करें, लेकिन इस तरह आके पेट्रोल कैपिटल को बंद करने की प्लानिंग करना या किसी सूबे के ऊपर इस तरह जाके हमला करना किसी भी तरीके से इजाज़त नहीं हो सकती आपको। इस तरह के वाकयात के बाद वैसे भी आपको जो भी देता कि एक तरफ आप चौदह के जनाजे उठाए और दूसरी तरफ आप धरने के ऊपर तैयारी करें, कोई भी इसी पे बंदा बैठा हो उसका ये फर्ज है कि हमने जानो माल की तहफ़ करना है और इस्लामाबाद और अपनी टेरिटरी और इस तरह के प्रोटेस्ट को हर सूरत में रोकना है। ये जो जलवार करने वाली जत्थे इसमें फर्क होता है, बाद हर तरह से इकट्ठे होकर आना, ये क्लैरिटी है कि एक भी अल्लाह ना करे जान जाती है तो इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं। मुल्क का नुकसान है, हमारी इकॉनमी का नुकसान है, सबके सब तैयार है और हम किसी भी सूरत में एक दफा वो बदमनी नहीं फैलाने लेंगे जो बाजू में लोग फैलाते रहे।
1: घरू वजीर मोहसन नकवी चयो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का पोई मुल्क के गादी वाले शहर ते का नथी करे सकजे, केर भी गलत फहमी में न रहे। इस्लामाबाद के बंद करण या एहतजाज की आड़ में हमले की इजाजत न डनी वेंदी। जवानन के बुधाए छो है तो इं नो तो गोलियो हलन तमा खामोश रहो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे मोहसन नकवी चो अदालती फैसले की भंज कड़ी थी तो इन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कई वेंदी। सोशल मीडिया से गाल थी रही है तो मखसूस कबीलन जहा मू अची रहा तवा के एहतजाज करो है तो पैं इलाके शहर में कर मू या चंदो जमा कर बदल दहशतगर्दी खिलाफ जंग से ध्यान होजन घुर्जे। कुहाट में दहशतगर्दी जो अफसोसनाक वाक्य थो तवा के नो सूए तो एक तरफ शहीदन जहा जनाजा खजन ए बे तरफ धरण की तैयारी कजें।

सिंध असेंबली मक्का मुकरमा ते ड्रोन हमले खिलाफ मजम्मती ठहराव मंजूर करे वरतो। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जो तरमीमी बिल भी मंजूर। पीटीआई के हामी मेंबर सजाद अली पारा बिजली की लोडशेडिंग खिलाफ ठहराव पेश। साबिर कायम खानी ध्यान छिकायो नोटिस से गालंदे चो हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पीने के पानी जो शदीद बोहरान है। सिंधु दरिया के कप से होजन बावजूद हरावासी बेगदरों पानी वापरण से मजबूर है।

0: बिलावल मेरा कजन है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। ये इसका कसूर नहीं है, इसमें इनका हाथ बिल्कुल भी नहीं है। हाथ किसका है? सरदार शाह का है, जो जो लोकल नुमाइंदे हैं, जो लड़काना के नुमाइंदे हैं, उनका इसमें बड़ा हाथ है। वो करप्ट है। हम चाह रहे हैं कि वो आके टेबल पे बात करें, वो आके इनके डिमांड्स को सपोर्ट करें। मगर आपकी बात भी बिल्कुल सही है, मैं एक साल से उनके साथ हूँ, एक साल से इनका इनके मुतालबा देख रहा हूँ, बल्कि मैं डॉक्टर्स के साथ भी खड़ा हूँ, मैं SPSC वालों के साथ भी खड़ा हूँ, जो बच्चे जो अगवा हुए थे उनके भी वालदेन के साथ खड़ा हूँ। सिंध में बहुत सारे मसाइल देख रहे हैं, इससे मुझे दुख होता है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सगे थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।